खोल खजाना। गुरु नानक ने साड़ी झोली विच पाया, सानू इस अनमोल खजाने दी पहचान हो जावे। वाहिगुरु मेर करे इस अनमोल खजाने तो असी लाभ ले सकीए। साध संगत जी, जपजी साहब दी इतनी महानता, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गुरु अंगद देव जी दे हिरदे दे विच अपनी जोत टिकाई है, अपना रूप बख्शिया है, एक बारी प्यार ना लाखो सतनाम। सतसंग जी, जदों गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद देव जी दे हिरदे विच जोत टिकाई, अपना रूप बख्शिया, कुछ बचन भी कीते,

आगरे भेजिया सी गुरु पातशाह ने प्रचार लई आगरे भाई गुरदास जी आगरे सन ते जदों एक सुनेया पहुंचा के गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए ने एक बारी आखो सतनाम जिस मालक नू मन वेचिया होवे ज्योति ज्योत समाउण दी खबर मिले किवें रह सके।

और किसे स्थान उते जुल्म दियां हनेरियां चुलियां ने पापां दे बदल छाए ने ओ समय इतिहास दा खूनी पत्रा बनदा गया। समय समय अनुसार अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने वखरे वखरे रंगा राही किसे पीर फकीर जा दरवेश दे जामे विच प्रगट होके सारी कायनात दे दुखां दर्दां दा नाश करन लई आप सहाई हुंदे रहे। दुष्ट दमन दशमेश पिता ने उस समय अवतार तारिया जदों के गरीब मजलूमा दुखियां दी कीखो कार सुन वाला और रक्षा करन वाला धरती उत्ते होर कोई नहीं सी। पिता तो पुत्रा तक सारा सरबंस वतन कौम दे लेखे लाके गुप्त हनेरी रात नू माछी बाड़े दे बिया बान जंगलां विच टीम दा सराणा लाके चोजी प्रीतम लोकां भाणे ता रोड़ा उत्ते सुते हुए सन, पर असल विच दशम पिता सुते हुए नहीं सन। भला कदे औखियां घड़ियां विच वी कदे किसे नू रोड़ा उत्ते नींद आ सकती है? जदों के लुकाई दे दुखां नू किसे ने आप जान बुझ के सीने नाल लाया होवे। कलंगियां वाले दशम पिता उस वेले अखां मीटी शायद इस ख्याल विच मगन सन कि किस तरह जुल्म दियां जड़ां पुट के देश दे गलों गुलामी दा फंदा लाया जाए। लुकाई लई सब कुछ वार के करों बेकर हो के जंगलां दा वासी होके रहना फिर सिदक ना हारना कमाल। दुनिया दे इतिहास विच इस तो वड्डी कुर्बानी दी मिसाल होर

परम सत्कार योग साध संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करो गीत ध्यान संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरणा विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी दा कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल दा पंजवां समाप्ति दा दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जेड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज दा अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलदी है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी किरपा होवे उदों सतगुरु पातशाह जी किरपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ां व्यर्थ गईयां। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारेओ मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारेओ सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के खुश। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया। कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों। एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे वो कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਛ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनु कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखां वल भजदे चाहना के मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त करके वाहिगुरु ने तेरे लिए किते प्रबंध किते, माता के उदर में प्रतपाल करे, माता दे उदर विच भी तेरी प्रतपालना कीती, जदों तेरा जन्म होया तावी तेरे सारे प्रबंध कीते, कदी अकाल पुरख दे उपकारा नूं ही चेते करके तू जप लैंदा, आख्या जे नहीं जपिया तां चोर की न्याई जम कुरबादा, क्योंकि अमोलक स्वास प्राप्त करके जिन्हां ने जपिया नहीं फिर जमपुर बदे मारी है, आख्या तिन्ना मुख डरावणे जिन्हां विसारियो नाउ, एथे दुख घनेरियां अगे ठोर ना थाऊ, पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक ज्यो मथन मादानिया त्यों मथै धर्म रहे, एडी सजा दा भागी होवेगा जे तू अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करता, इसलिए हर का नाम जिन मन ना आरा

देव जी नाम जपदिया जपदिया ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानिया दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरा दे इशनान करन ले जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा।

सदा तेरी आस, सबको आस है तेरी बेटा। हे मेरी मालिक, इस संसार विच कौन ऐसा व्यक्ति है जेड़ा तेरी आस तो बिना जी रहे है। तेरे दर करते सब ने आस लाई हुई है। किस लिए? क्योंकि आप सब दिया आसा पूरियां कर दे हो। जेड़ा भी इस दर ते आस लैके आंदा है उदी आस पूरी हुंदी है। एवें नहीं कोई इत्थे आंदा, हर किसी दे मन दी कोई ना कोई आस जरूर है, पर शायद आस उत्थे कीती जांदी है जिथे पूरी हुंदी होवे। ते जिथे कोई पूरी ना करे उत्थे कोई आस नहीं रखदा। सानू आप ते आस है, एक गल वखरी है, आस भी कई प्रकार की है। एक गल का ख्याल रखना, आस पक्की होवे कच्ची ना होवे। कर आसा आयो।

कर आसा आयो प्रभ मांगण। मैं बड़ी आस करके ही मेरे मालिक तेरे दर तो मंगण आया। कहिंदे ने मंगिया फरीद ने भी, बाबा फरीद ने मंगिया आस लाई। लिखो हुण आस कैसी है, साडे कलजुगी जीवां दी तरह नहीं, साडी आस ते बहुत कच्ची है। दो चार वर्षी गुरु घर आउने आ, आस पूरी हो जाए ते ठीक है, पंजवें दिन गुरुद्वारे ही नहीं वड़दे, साडी आस ही नहीं पूरी हुई। नहीं भाई, इस दर ते ते हर किसी की आस पूरी हुंदी है। हां ये गल जरूर होई है कि जिस वेले आस पूरी होनी सी उस दिन तू आया ही नहीं, उस दिन तू दर छड के ही चला गया है। इत्थे ते रोज आ, रोज हाजरी पर, पता नहीं किस वेले अरदास मंजूर हो जानी है। आस पक्की रख के बह, ये ना सोच के पूरी नहीं होई, जरूर होवेगी। हुण बाबे फरीद दे किसे आस लाउणी है,

हे मालिक मैं ये आस ला के बैठा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा, मैं तो इस आस विच बैठा वा हे प्रभु मैनू कदों गल ना लावेगा। हुण ये आस ते पूरी ताई हो सकती है कि मनुख पक्की आस रखे, कच्ची ना हो, इतनी पक्की

प्यारा लिखा है, चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है, बाही जना दी पकड़ी है, सिर दी जय बाही ना छोटी है। असि जकारा बुलावे, तुम सारे ने उच्ची वाह करनी है, सच्चे पातशाह साड़ी वाह।

0: अमृत धारी गुर निमुख न मन ते तारी रे, दर्शन परसन
1: सरसन हरसन
0: रंग रंगी करतारी रे, खिनरम
1: खिनरम गुरगम
0: खिनरम गुरगम खिनरम गुरगम नैदम हरदम हर कंठ।

अमृत हरिकाना अमृत वाणी अमयोरस अमृत हरिकाना मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ उपदेश सुनो गुरबाणी गावो पाई उपदेश सुनो तुम गुर सिखो।

सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना। गुरबाणी गावो पाए सुख सहज आनंद गाना, तब जपते दुख जाए नानक नाम जपत सुख लुके।